0: तूने सपना को हाथ लगाया, हमारी इज्जत में हाथ डाला।
1: मामा ठाकुर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
0: सामान खींच लूंगा तेरी।
2: मामा जी,
1: अपना ये डंडा संभाल के रखिए, कोई झंडा लहराने के काम आएगा। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं।

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ हर बीट

0: प्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल गंगापुर सिटी। मैं आपका रेडियो दोस्त देसी मीना। दोस्तों, फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री के साथ साथ अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत कार्यक्रम से यही लेते हैं विदा और थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
4: हेलो।
5: हेलो
4: जी, नाम बताएं आपका।
5: आरबी गुजर।
4: आरबी गुजर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
5: गंगापुर से।
4: पता है मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: मेरे बिना।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश है।

0: जी नाम बताएं।
1: कृष्णा।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रचित विहार कॉलोनी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: चलो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश है।

0: बताएं सर। हेलो
1: हाँ सर,
0: आपका नाम बताओ पहले।
1: पीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी करौली फाटक।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो
3: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
3: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिल्लुखेड़ा से।
2: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
3: एक गगन का राजा, एक चमन की रानी।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग।

0: जी नाम बताएं।
1: ज्योति सारंगी।
0: ज्योति श्वानकर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: करौली फाटक।
0: बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: मैं थारे पांव की जूती ना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग।
1: थैंक यू।
2: कल करवाए।

0: ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: जी नाम बताएं सर आपका।
2: मेरा नाम विक्रम मीन है, गंगापुर सिटी से।
1: बताएं विक्रम जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
2: जीने लगा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर आपका।
0: मेरा नाम है प्रिया।
1: प्रिया जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मैं बोल रही हूँ गंगापुर सिटी।
1: बताएं प्रिया जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
0: वो सिद्धू वाला 256।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

वक्त हो चुका है 10:27 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त हरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्द ही पूरा करेंगे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: बता दिया।
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस Academy, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: तो मट्टू बोल रहा भाई।
4: और सर कैसे हो? हेलो
3: हेलो DS रेडियो गंगापुर राजस्थान जी।
4: हाँ जी सर।
3: पलक बेटा प्यार से सत श्री अकाल भाई।
4: सत श्री अकाल सर, नाम क्या है आपका?
3: बेटा मैं पिंड मौड़ खुर्द डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो जी तो मट्टू बोल रहा भाई।
4: और सर कैसे हो?
3: ठीक ठाक भाई, तुम दसो भाई घर परिवार ठीक ठाक है? छोटे मम्मी पापा भाई।
4: हाँ सर ठीक है। और सर मौसम कैसा है उधर का अपना पंजाब?
3: बेटा बहुत गर्मी आ रहा है, 35 तापमान है वेदर।
4: हाँ सर यहाँ पर भी 33 है सर।
3: तो बेटा थोड़ी बारिश नहीं आई है ये बड़ी मोटी?
4: नहीं सर बारिश नहीं हुई है, अभी तो मौसम हो रहा है, आज भी हो रहा है बारिश का, पर बारिश नहीं आ रही बिल्कुल भी।
3: अपने बेटा बठिंडा FM रेडियो कहता है भी आज से 4 दिन तक बहुत बारिश आएगी पंजाब में, कैसे है?
4: हाँ ऐसे बता रहे हैं, आज शाम को 4 के बाद बारिश बता रहे हैं, परंतु अभी देखते हैं क्या होता है, कभी कभी झूठ
3: कभी झूठ नहीं बोलता।
4: ये बात सही कह रहे हैं बिल्कुल।
3: सानू भाई रेडियो स्टेशन का इतना भरोसा ना, जिम्मे रेडियो कहूंगा इन्हना तो चाहते हैं, कोई भी काम करना रेडियो सुन के फिर काम कर दिया।
4: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर आज?
3: बेटा पंजाबी सॉन्ग सुना दो ना, ठीक है ना?
4: कौन सा सर?
3: सिंगर है बेटा कलियों कलमों दे बादशाह श्री कुलदीप मान साहब का। बेटा एक बेटा माँ का गीत है, माँ का।
4: कौन सा है सर? माँ का
3: मा, हाँ बेटा गा के बताऊँ बेटा एक बार।
4: हाँ सर गाना बताइए।
3: हाँ

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, नाम क्या है आपका?
0: जी नाम तालिब खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: लोगों का लोनी गंगा पूछ रही।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना सुना दो आज तोड़ ना डोरी प्यार की साजन मान भी जा।
1: कौन सा सर?
0: तोड़ ना डोरी प्यार की साजन मान भी जा।
1: सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।

0: हेलो
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: रफी खान, लोगो मध्य के पीछे से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जिंदगी के राहों में रमजो गम के मेले।

0: श्रीकाल।
1: हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम सर श्याम जाट।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: अलीमपुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मैं तू बोलेगा बुझानी, मासूम शर्मा का सॉन्ग है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: मोहम्मद शादाब खान।
1: शादाब जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: उत्तर प्रदेश फरुखाबाद अमेठी जलीस से।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राई चल अकेला।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
0: सोहेल सैफी।
1: बताएं सैफी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर आज गाना सुनना चाहते हैं, मूवी का नाम है काबिल, और गाने के बोले दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: मेरा नाम रोशन है।
1: रोशन जी कहाँ से बात? मदीना मस्जिद से। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: लहरा मजनू का। लहरा मजनू
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश के।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: जी धर्मराज मीना है।
0: धर्मराज मीना जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हाँ मैं गांव कानापुरा है, वैसे गंगापुर से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं सर रेडियो से?
1: सर ये साजन फिल्म का है, मेरा दिल भी कितना पागल है।

0: हाँ?
1: नाम बताएं आपका।
0: है?
1: आपका नाम बताओ।
0: शीतल।
1: शीतल कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: हिंगोटिया।
1: हिंगोटिया से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: कैंसर जूते की नोक पर।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश के एकदम।

0: पता है मंसूरी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: यूपी ईस्ट फरुखाबाद से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीए से?
1: बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर आपका।
1: नमस्ते सर। नमस्ते
0: नमस्ते, नाम बताएं
1: सर। नाम ऋतिक शर्मा।
0: ऋतिक शर्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर की टीम बात कर रहे हैं सर।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर गोल्डी 315 का ला दो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: आपका नाम बताएं?
3: हाँ सर जी, जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी सर।
2: जम्मू से केशव शर्मा सुषमा रानी जी, बताएं सर कौन सा गाना सुना?
3: सर जी फिल्म सुना दी 2 जून का गाना है, फिल्म शत्रीना पोल छोड़ी जाएगी।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के बेहतर।

0: हेलो हेलो हेलो जी, नाम बताए सर।
1: हेलो
0: सर, आपका नाम बताए।
1: सैनी।
0: सैनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: दिल पे जख्म खाते हैं हम, जान से गुजरते हैं।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी समय से।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: सुमन कुमार सिंह।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: चच्चा सुन।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो,
1: नाम बताए सर आपका?
0: आर्यन मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम विष्णु गुर्जर है।
1: विष्णु जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं विष्णु जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: जी, योगेश जांगड़े, भी मैं करा छत्तीसगढ़।
1: योगेश जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सावन का कोई बढ़िया सा गीत सुनवा देंगे।
1: जी, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो
1: हेलो, नाम बताएं सर।
0: हाँ,
1: नाम बताओ आपका।
0: वीरेंद्र।
1: वीरेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: हाँ,
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
0: हो?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तो
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:51 का दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर
4: तो, हाँ जी नाम क्या है आपका
5: कोमल
4: कहाँ से बात कर रहे
5: गंगापुर सिटी
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
5: मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया
4: ओके मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश
1: 89.6 डीएस एफएम पे
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है बेटा?
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम सुनीता है, मैं गंगापुर सिटी से बोल रही
1: हूँ। कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: वो हमसे खाता है, हम उसे खाता है।
1: ओके, तुम्हारे यहाँ पर मैं

0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम हिमांशु मीना है।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? रिको से बात कर रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: नांदनी।
0: ओके सर, सुना रहे आप।
2: Yeah, well.

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अमन मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
0: तू दोगली थी मेरा नहीं था।
1: कौन सा?
0: दोगली थी मेरा नहीं था।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: जी
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? मैं कॉलोनी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दो भाई अपनी ठाडी देख
0: ऐसे सब सुना रहे आपको।

0: नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नमस्कार, नाम बाबू खान है।
0: सर कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आज तुझसे जो कहना है कहने दे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैं किता।
0: कहाँ से बात कर रहा हूँ?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: सनसेट टूटे कोई सपना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

शांति, तुमने तुमने सही किया, अपनी खुशी चुन ली, और ये मत सोचना कि मेरा दिल टूट गया ना। मैं खुश हूं क्योंकि क्योंकि तुम खुश हो। लेकिन वो मेरा साहब से जरूर कह देना कि इस बार मैंने उन्हें छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खाते। हाँ, अगली बार कहीं किसी जन्म में उनका मुझसे फिर पाला पड़ गया ना, तो आप मुनियादार मुनियादार या नाराज कला माइंडे तुम बोर तो नहीं हो रही है?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: जय भवानी मामा जी, नाम क्या है आपका?
3: विमल, ओनली विमल, राजस्थान
2: जी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: रामचंद्र कह गए सिया से।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठ रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: दोस्तों भी आपने सुना हलू फरमाइश कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नए तराने। दोस्तों दोपहर का एक बज चुका है और लेकर हाजिर हूँ मैं आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम नए तराने कार्यक्रम। चलिए दोस्तों करते हैं कार्यक्रम का आगाज और कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं चाय पी लो यारों के साथ।

होता है। और इस बार भी डीएस साइंस एकेडमी ने रच दिया एक और स्वर्णिम इतिहास। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल AIR 347 और EWS रैंक पीस, साथ ही लगभग 80 विद्यार्थियों का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन, यही है डीएस साइंस एकेडमी पर विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा। टारगेट नीट 2027 के लिए नया बैच शुरू हो रहा है 20 जुलाई सोमवार दोपहर 12:30 से। अगर आपका सपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है तो शुरुआत कीजिए सही दिशा के साथ डीएस साइंस एकेडमी, जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सिलेक्शन की तैयारी होती है। सीटें सीमित हैं, अपना प्रवेश आज ही सुनिश्चित करें। अभी कॉल करें 800-55-9837।

0: करिश्मा कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: रिजल्ट बोलता है
2: और इस बार भी DS साइंस एकेडमी ने रच दिया एक और स्वर्णिम इतिहास। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल AIR 347 और EWS रैंक 20, साथ ही लगभग 80 विद्यार्थियों का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन। यही है DS साइंस एकेडमी पर विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा। टारगेट नीट 2027 के लिए नया बैच शुरू हो रहा है 20 जुलाई सोमवार दोपहर 12:30 से। अगर आपका सपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है तो शुरुआत कीजिए सही दिशा के साथ DS साइंस एकेडमी, जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सिलेक्शन की तैयारी होती है। सीटें सीमित हैं, अपना प्रवेश आज ही सुनिश्चित करें। अभी कॉल करें 800-55-9837।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है।

0: कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड। हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
2: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही

0: दोस्तों भी आपने सुना नए तरह ने कार्यक्रम। दोस्तों इस कार्यक्रम को यहीं समापन कर दोपहर के 2 बज चुके हैं। आपको लेकर चलते हैं भूली बिसरी यादें कार्यक्रम पर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
4: रिजल्ट बोलता है,
5: और इस बार भी DS साइंस एकेडमी ने रच दिया एक और स्वर्णिम इतिहास। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल AIR 347 और EWS रैंक 20, साथ ही लगभग 80 विद्यार्थियों का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन। यही है DS साइंस एकेडमी पर विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा। टारगेट नीट 2027 के लिए नया बैच शुरू हो रहा है 20 जुलाई सोमवार दोपहर 12:30 से। अगर आपका सपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है तो शुरुआत कीजिए सही दिशा के साथ DS साइंस एकेडमी, जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सिलेक्शन की तैयारी होती है। सीटें सीमित हैं, अपना प्रवेश आज ही सुनिश्चित करें। अभी कॉल करें 800 555 9837।

नमस्कार, मैं डीएस साइंस एकेडमी से बोल रहा हूँ। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी हमारे छात्रों ने कमाल कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल और 347 ईडब्ल्यूएस रैंक के साथ कुल 80 से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी जगह बनाई है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और हमारे अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। अगर आपका भी सपना सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने का है तो ये आपके लिए सही जगह है। 2027 के लिए हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जहां विश्वास है वहां कामयाबी निश्चित कदम चूमेगी। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी।

नमस्कार, मैं डीएस साइंस एकेडमी से बोल रहा हूँ। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी हमारे छात्रों ने कमाल कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल और 347 EWS रैंक के साथ कुल 80 से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी जगह बनाई है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और हमारे अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। अगर आपका भी सपना सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने का है तो ये आपके लिए सही जगह है। 2027 के लिए हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जहां विश्वास है वहां कामयाबी निश्चित कदम चूमेगी। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी।

0: और दोस्तों 3 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में मैं आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम बैक टू बैक गानों का।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, मैं DS साइंस एकेडमी से बोल रहा हूँ। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी हमारे छात्रों ने कमाल कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल और 347 EWS रैंक के साथ कुल 80 से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी जगह बनाई है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और हमारे अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। अगर आपका भी सपना सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने का है तो ये आपके लिए सही जगह है। 2027 के लिए हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जहां विश्वास है वहां कामयाबी निश्चित कदम चूमेगी। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी।
3: पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
4: ये DS साइंस अकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण,

0: खुद को भी आपने सुना बैक टू बैक गानों का ये कार्यक्रम। इस वक्त अमृतसर टून कर रहा 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के साथ आप इस कार्यक्रम को अब यहीं समापन करते हैं और थोड़ी देर बाद लेकर हाजिर होंगे यानी 4 बजे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी गीत।
1: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस नवासी 86.6 पर बने रहे। हमारे साथ बेहतरीन गाने और बातचीत, महिलाओं और बालकों, युवाओं बुजुर्गों के सभी कार्यक्रम के साथ सरकार की विभिन्न योजनाएं, सामाजिक कार्यक्रमों के साथ जागरूकता और शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम को लेकर आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे आशी मीणा और पलक शर्मा के साथ बने रहे। हमारे साथ लगातार रेडियो डीएस पर आप भी सुने, परिवार एवं मित्रजनों को सुनाए आपका पसंदीदा गंगापुर सिटी सवाई मधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो जो मनोरंजन का सरताज है, रेडियो डीएस नवासी

0: नमस्कार, मैं डीएस साइंस एकेडमी से बोल रहा हूँ। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी हमारे छात्रों ने कमाल कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल और 347 EWS रैंक के साथ कुल 80 से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी जगह बनाई है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और हमारे अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। अगर आपका भी सपना सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने का है तो ये आपके लिए सही जगह है। 2027 के लिए हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जहां विश्वास है वहां कामयाबी निश्चित कदम चूमेगी। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
0: नमस्कार, मैं DS साइंस एकेडमी से बोल रहा हूँ। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी हमारे छात्रों ने कमाल कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल और 347 EWS रैंक के साथ कुल 80 से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी जगह बनाई है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और हमारे अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। अगर आपका भी सपना सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने का है तो ये आपके लिए सही जगह है। 2027 के लिए हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जहां विश्वास है वहां कामयाबी निश्चित कदम चूमेगी। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी।
2: पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
5: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त इशी मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी। साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झान से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बनें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
6: दोस्तों, इस वक्त आप ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS 89.6 पर। बने रहे हमारे साथ बेहतरीन गाने और बातचीत, महिलाओं और बालकों, युवाओं, बुजुर्गों के सभी कार्यक्रम के साथ सरकार की विभिन्न योजनाएं, सामाजिक कार्यक्रमों के साथ जागरूकता और शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम को लेकर आपके अपने रेडियो दोस्त RJ आशी मीणा और पलक शर्मा के साथ बने रहे। हमारे साथ लगातार रेडियो DS पर आप भी सुने, परिवार एवं मित्रजनों को सुनाए आपका पसंदीदा गंगापुर सिटी सवाई मधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो, जो मनोरंजन का सरताज है। रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
4: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।
5: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 पर। बने रहे हमारे साथ बेहतरीन गाने और बातचीत, महिलाओं और बालकों, युवाओं, बुजुर्गों के सभी कार्यक्रम के साथ, सरकार की विभिन्न योजनाएं, सामाजिक कार्यक्रमों के साथ जागरूकता और शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम को लेकर आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे आरशी मीणा और पलक शर्मा के साथ बने रहे हमारे साथ लगातार रेडियो डीएस पर। आप भी सुने, परिवार एवं मित्रजनों को सुनाए आपका पसंदीदा गंगापुर सिटी सवाई मधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो जो मनोरंजन का सरताज है, रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

दोस्तों अभी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम। दोस्तों थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के साथ आप इस वक्त मेरे साथ आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हल्लू फरमाइश का।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त इशी मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झान से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: हेलो
1: हेलो सर। हाँ सर
0: जी, नाम बताओ।
1: गाना जी सर, मैं मोनू बोल रहा हूँ।
0: मोनू जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं चूड़ी से बात कर रहा हूँ।
0: मोनू जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस पे?
1: हीरो भात वरन में आवे राजस्थानी
0: गाने। बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश के राजस्थानी सॉन्ग रेडियो डीएस में। कौन किया, धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
3: डियर साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियर।

0: सादर नमस्कार।
1: बताएं सर, नाम बताएं आपका।
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। ऋषि जी आप कैसे हैं?
1: शारदा प्रसाद जी बहुत अच्छे हैं। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप रेडियो डीएस से?
0: भक्ति गुल मीटर चालू, क्या से क्या हो गए देखते देखते।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का।
0: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। नमस्कार।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, मैं डीएस साइंस एकेडमी से बोल रहा हूँ। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी हमारे छात्रों ने कमाल कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल और 347 EWS रैंक के साथ कुल 80 से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी जगह बनाई है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और हमारे अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। अगर आपका भी सपना सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने का है तो ये आपके लिए सही जगह है। 2027 के लिए हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जहां विश्वास है वहां कामयाबी निश्चित कदम चूमेगी। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी।
3: पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
4: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान।
5: हेलो जी, नाम बताए सर।
6: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ सर, महावीर जी से।
5: चौधरी जी बताएं, कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
6: गाना है सर मंजिल ठीक कहीं।
5: बताएं।
6: मंजिल ठीक कहीं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीणा के साथ हाजिर है।
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
2: जी तुलसीराम जी, बताएं कौन सा गाना सुनना है आज आपके।
1: चूड़ियां बाजार से मंगवा दे रे पहले सही।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: मोनिका
1: जी, कहाँ से बात कर रही
0: हैं? रेलवे कॉलोनी।
1: बताएं मोनिका जी, किसका गाना सुनना है?
0: मर जावा मिट जावा कर जावा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं, अच्छी सपना।

0: नमस्कार, मैं डीएस साइंस एकेडमी से बोल रहा हूँ। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी हमारे छात्रों ने कमाल कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल और 347 EWS रैंक के साथ कुल 80 से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी जगह बनाई है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और हमारे अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। अगर आपका भी सपना सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने का है तो ये आपके लिए सही जगह है। 2027 के लिए हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जहां विश्वास है वहां कामयाबी निश्चित कदम चूमेगी। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी।
1: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो, नाम बताएं सर।
3: वंदना।
2: वंदना जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मऊ कला गंगापुर सिटी से।
2: बताए वंदना जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: सिमादू नया सिमादू शहर की तरफ जीते।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का।

0: पसंदीदा गंगा पुरुष सवाई मधोपुर का पहा
1: जी नाम बताएं।
2: मेरा नाम सालू।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
2: क्या
1: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: गंगापुर से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस पे?
2: अफसाना बना के भूल न जाना।
1: बिल्कुल सालू जी सुना रहे हैं आप, आपकी फरमाइश के रेडियो डीएस में कॉल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भी हमारे छात्रों ने कमाल कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल और 347 EWS रैंक के साथ कुल 80 से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी जगह बनाई है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और हमारे अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। अगर आपका भी सपना सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने का है तो ये आपके लिए सही जगह है। 2027 के लिए हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जहां विश्वास है वहां कामयाबी निश्चित कदम चूमेगी। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
2: सर नाम बताएं आपका।
3: बाबू खान है नाम।
2: बाबू खान जी बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं।
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना है।
3: उम्र के जो होगी चाहे फैसला अदालत का।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं सर आपका।
3: मालिम।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: जय संजना।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: जी नाम बताएं।
3: पिंकी।
2: पिंकी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: रेलवे स्टेशन।
2: पिंकी जी बताएं कौन सा गाना सुनना है?
3: मुझे साजन के घर जाना है।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आप, आपकी फरमाइश पे सॉन्ग रेडियो DS में कॉल किया, धन्यवाद।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: जून 2026 के 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, प्रश्न और उत्तर, प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि के लिए उपयोगी। ये प्रश्न प्रमुख राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, अर्थव्यवस्था, रक्षा और अन्य घटनाओं पर आधारित हैं। एक, स्लोवाकिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया? उत्तर, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। दो, जून 2026 में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर, 65। दो पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री। 3, सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया? उत्तर, चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार, राइट टू वॉक ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ। 4, भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट कहां बन रहा है? उत्तर, महाराष्ट्र के पालघर जिले के तट से दूर। 5, नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग कहां और किस थीम पर हुई? उत्तर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्रतिभा भवन, थीम इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? उत्तर, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। 7, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कहां हुई? उत्तर, इंग्लैंड। 8, FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 किसने जीता? उत्तर, भारत, रनर अप न्यूजीलैंड। 9, यूएस ईरान के बीच 14-point MOU इस्लामाबाद मेमोरेंडम का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण, प्रतिबंध हटाना और क्षेत्रीय शांति। 10, G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसने की? उत्तर, फ्रांस। 11, RBI ने जून 2026 में रेपो रेट कितना रखा? उत्तर, 5.25%। FY27 GDP अनुमान 6.6%, मुद्रा स्फीति 5.1%। 12, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा? उत्तर, IIT दिल्ली, विश्व में 118वां। 13, पीएम मोदी को सेशेल्स का कौन सा सम्मान मिला? उत्तर, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, पर्यावरण संरक्षण के लिए। 14, भारत ने वेनेजुएला भूकंप राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? उत्तर, ऑपरेशन अमिस्टार। 15, ICGS अक्षय क्या है? उत्तर, नई पीढ़ी का फास्ट पेट्रोल वेसल, गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित। 16, जून 2026 में भारत ने कितने नए नौसेना प्लेटफॉर्म कमीशन किए? उत्तर, 3, INS दुनागिरी, INS संशोधन, INS अग्राय। 17, पहला स्वदेशी एयर कशिन व्हीकल H-561 किसने इंडक्ट किया? उत्तर, भारतीय तटरक्षक बल। 18, ओडिशा सरकार ने गो ईस्ट पॉलिसी क्यों शुरू की? उत्तर, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से निवेश आकर्षित करने के लिए। 19, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF की 19वीं संस्करण कहां हुई? उत्तर, मुंबई, NFDC द्वारा। 20, सुदर्शन पटनायक ने कौन सा पुरस्कार जीता? उत्तर,

0: एशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 सैंड आर्ट 21 QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत की रैंकिंग उत्तर 13वां। 22 तुषार मेहता का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? उत्तर सॉलिसिटर जनरल के रूप में अगले 3 वर्ष। 23 राइट टू बी के रूप में अगले 3 वर्ष या अगले 3 वर्ष। 23 राइट टू बी फॉरगॉटन कहां मान्यता मिली? उत्तर दिल्ली हाईकोर्ट आर्टिकल 21 के तहत। 24 पीएम मोदी ने जून 2026 में सबसे लंबे समय तक चुने गए पीएम का रिकॉर्ड बनाया? उत्तर हां, 10 जून 2026 को 4,399 दिनों के साथ। 25 आरबीआई ने केंद्र को कितना रिकॉर्ड ट्रांसफर किया? उत्तर 2.87 लाख करोड़ रुपए। 26 एफसीआर ए पोर्टल और ईओसीआई 2.0 किसने लॉन्च किया? उत्तर गृह मंत्री अमित शाह। 27 ECLG S5.0 को किसके लिए बढ़ाया गया? उत्तर वेस्ट एशिया संकट से प्रभावित MSMI जोन्स के लिए। 28 नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जारी किया? उत्तर हां, राज्यों की आर्थिक स्थिति के लिए। 29 ब्रिक्स NSA की 16वीं मीटिंग कहां हुई? उत्तर न्यू दिल्ली। 30 गुजरात में डॉल्फिन की संख्या कितनी पहुंची? उत्तर 680+। 31 इंडिया AI मिशन के CEO कौन बने? उत्तर सौरभ विजय। 32 CBSE के चेयरपर्सन कौन बने? उत्तर लोखंडे प्रशांत सीताराम। 33 नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन? उत्तर डॉक्टर एसआईबल चट्टोपाध्याय। 34 वर्ल्ड बैंक के इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? उत्तर नीलकंत मिश्रा। 35 व्हाट्सएप के CEO कौन बने? उत्तर कुणाल शाह। 36 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की किताब का नाम? उत्तर दी सेकंड ऑर्बिट ISS मिशन पर। 37 भारतीय राजा का निधन कब हुआ? उत्तर जून 2026 प्रसिद्ध तमिल फिल्मकार। 38 जसपाल राणा कौन थे? उत्तर प्रसिद्ध निशानेबाज और मनु भाकर के कोच। 39 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 किसने जारी किया? उत्तर रेलेवेंट अथॉरिटीज कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट भी। 40 नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट 2026 कब मनाया गया? उत्तर जून में 15 दिनों का।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
5: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
6: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: उस सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, मैं डीएस साइंस एकेडमी से बोल रहा हूँ। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी हमारे

0: ने कमाल कर दिया है। पूर्वी राजस्थान के टॉपर वैभव जिंदल और 347 EWS रैंक के साथ कुल 80 से अधिक विद्यार्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी जगह बनाई है। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और हमारे अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। अगर आपका भी सपना सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने का है तो ये आपके लिए सही जगह है। 2027 के लिए हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जहां विश्वास है वहां कामयाबी निश्चित कदम चूमेगी। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी।
1: पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
2: ये DS साइंस अकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस अकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
5: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो डीएस बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से आज का बालक कमजोर नहीं अकेला हो गया, आपके रेडियो दोस्त ऋषि मीणा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आज का बालक कमजोर नहीं बल्कि अकेला हो गया है। आधुनिक जीवन शैली ने बच्चों को शारीरिक रूप से कमजोर और भावनात्मक रूप से अकेला बना दिया है। क्यों हो रहा है ये और क्या करना चाहिए, ये बिंदु स्कूल अभिभावकों और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों हो रहा है ये? कारण एक, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, मोबाइल टीवी गेम्स में घंटों बिताने से शारीरिक गतिविधि कम हो गई। दो, घर से बाहर खेलने का समय कम, पार्क और मैदान खाली, बच्चे घर के अंदर बंद। तीन, जंक फूड और अनियमित खान पान, पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड, जिससे कमजोरी बढ़ रही। चार, पढ़ाई का भारी दबाव, कोचिंग ट्यूशन और प्रतियोगिता ने खेल और आराम का समय छीन लिया। पाँच, परिवार का छोटा होना, न्यूक्लियर फैमिली में दादा दादी की कहानियाँ और स्नेह कम हो गया। छह, सोशल मीडिया की लत, लाइक्स के चक्कर में असली दोस्ती और रिश्ते कमजोर। सात, नींद की कमी, रात देर तक मोबाइल देखने से थकान और कमजोरी। आठ, माता पिता का व्यस्त समय, दोनों माता पिता काम में, बच्चे अकेले रह जाते हैं। नौ, शारीरिक व्यायाम की उपेक्षा, स्कूलों में भी खेल का समय घटा दिया गया। दस, भावनात्मक समर्थन की कमी, बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर अकेलेपन का एहसास। क्या करना चाहिए? समाधान ग्यारह, प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेले, आउटडोर खेल, फुटबॉल कबड्डी दौड़ना। बारह, स्क्रीन टाइम सीमित करें, दिन में एक दो घंटे से ज्यादा नहीं और रात 8 बजे के बाद मोबाइल बंद। तेरह, संतुलित और घर का खाना, फल सब्जियां दूध अंडा अनाज, जंक फूड को कम करें। 14, परिवार के साथ डिनर टाइम, रोज एक समय साथ बैठकर बातें करें, अनुभव शेयर करें। 15, स्कूल में खेल को बढ़ावा, हर दिन खेल का पीरियड अनिवार्य, इंटर स्कूल मैच आयोजित करें। 16, भावनाओं को व्यक्त करने की आदत, बच्चे अपनी खुशी गम बताएं, माता पिता सुने। 17, दोस्तों के साथ ऑफलाइन समय, घर पर बोर्ड गेम, किताबें पढ़ना, साइकिलिंग। 18, नींद का पूरा समय, रात 9-10 बजे सोना और सुबह जल्दी उठना। 19, योग और प्राणायाम, स्कूल में रोज 10-15 मिनट योग, शरीर और मन दोनों मजबूत। 20, माता पिता का सक्रिय रोल, सप्ताह में कम से कम एक दिन बच्चे के साथ पूरा समय बिताएं। 21, पुस्तक पढ़ने की आदत, स्क्रीन की जगह किताबें, कल्पना शक्ति और एकाग्रता बढ़ेगी। 22, समूह गतिविधियां, स्काउटिंग, नृत्य, संगीत, कला क्लब, अकेलेपन को दूर करें। 23, स्कूल और घर का सहयोग, अभिभावक शिक्षक मीटिंग में शारीरिक स्वास्थ्य पर चर्चा। 24, आत्मविश्वास बढ़ाना, छोटी छोटी सफलताओं को सराहे, गलतियों से सीखें। 25, प्रकृति से जुड़ाव, पेड़ लगाना, पार्क में समय बिताना, पक्षी पशु देखना, मन शांत और मजबूत होता है। ऋषि मीणा कहते हैं, दोस्तों आज का बालक कमजोर नहीं है, बस उसे सही दिशा और समय की जरूरत है। अगर हम आज से ही छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो कल हमारे बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और खुशहाल होंगे। याद रखिए, बच्चे कमजोर नहीं होते, हमारी जीवन शैली उन्हें कमजोर बनाती है। डीएस बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से ये संदेश जनहित में जारी किया गया है। अपने विचार हमें बताएं, कॉल करें या मैसेज करें। रेडियो डीएस, स्वस्थ बच्चा स्वस्थ समाज।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। हेरा रे रा,
1: हेरा रे रा। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। हेरा रे रा,
2: नमस्कार। गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। तेरा रे रा,
3: तेरा रे रा। दोस्तों, अभी आपने सुना लू फरमाइश कार्यक्रम। फिलहाल आप इस वक्त मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है आपके मन पसंद कार्यक्रम भजन संध्या का। तो सुनते हैं ये प्यारा सा एक भजन।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: इतनी बड़ी स्टील कंपनी का मालिक,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
6: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही है, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
7: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ।

थान के जैसे होते हैं। यदि गुरु से मिलने के लिए अपने शीश का दान भी देना पड़े, अथवा शीश का दान देकर भी अगर गुरु की प्राप्ति हो जाए

इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि हमें हमेशा मधुर और विनम्र बोलना चाहिए, जिससे न सिर्फ हमारे मन को शांति मिले बल्कि हमारी वाणी सुनकर, हमारी आवाज सुनकर औरों के मन को भी शांति मिले।

प्रिय श्रोताओं, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी हमें समझा रहे हैं कि केवल बड़ा या शक्तिशाली होने का कोई लाभ नहीं यदि आप दूसरों के काम ना आए। जिस प्रकार खजूर का पेड़ ऊंचा होने के बावजूद भी किसी राहगीर को छाया नहीं दे सकता, और तो और उसका फल भी बहुत ऊंचाई पर होता है जिससे कोई भी उसके फल को खा नहीं सकता। इसलिए जीवन में बड़ा होने का महत्व तभी है जब किसी और का जीवन आपकी वजह से

इस दोहे का अर्थ है कि जो निंदा करने वाले हैं, अर्थात जो आपके बारे में सच बोलने वाले हैं, यानी जो आपको आईना दिखाने वाले लोग हैं, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी बुराइयों को बता दिया करते हैं।

के इस दोहे का अर्थ है कि जब मैं दुनिया में दूसरों में बुराइयां ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी इंसान वास्तव में बुरा नहीं मिला, किंतु जब मैं अपने हृदय में झांका तो पाया कि सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता तो मुझ में है, अर्थात मानव को किसी दूसरे में बुराई खोजने से पहले स्वयं की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी

0: इस दोहे में कहते हैं कि ये मानव जीवन पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार भोर होने पर सभी तारे छुप जाते हैं, उसी प्रकार एक दिन हम सभी काल के मुख में समा जाएंगे।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE and CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: दोस्तों, इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम दी संध्या। दोस्तों, अभी सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में श्याम सिंह राजावत जी, निवासी न्यू जवार कॉलोनी ठींगला सवाई माधोपुर से। दूसरे मेहमान के रूप में पधारे हैं हमारे पास खिलाड़ी चंद्रवीर सिंह राजावत जी, निवासी बाल मंदिर सवाई माधोपुर से। कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है, नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्याम सिंह राजावत जी से। श्याम सिंह जी, आपकी खेल जगत की शुरुआत कहाँ से हुई है?
1: सर, जब मैं 12 साल का था तब से हैंडबॉल खेलना शुरू किया
0: जी।
1: स्टार्टिंग से सब जूनियर टूर्नामेंट खेले, कई सारी जूनियर भी खेले, हम लगभग 30 से 35 चैंपियनशिप खेले मैंने।
0: अच्छा,
1: अभी तक ठीक है। हम खिलाड़ी के साथ साथ कोच कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को, तो हम छोटे बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, वो भी हर साल यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मेडल ला रहे हैं, अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, और निरंतर प्रतिभाएं बाहर निकल रही है सवाई माधोपुर से।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपकी शुरुआत कब और कहां से आरंभ किया आपने खेलना?
2: सभी को नमस्कार। खेलने का तो यह है साहब, बचपन में जब एक बार गलियों में कॉलोनियों में खेलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वहीं कोई किसी को देखते हैं और उनको अपना आइडियल बनाते हैं, ऐसे समय पे कुछ सलाह देने वाले मिल जाते हैं, कोचेज मिल जाते हैं, तो वो खेल को निखारते हैं। तो अमूमन 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से जो टीचर थे हमारे, शिवदयाल जी वार साहब, मनटाउन स्कूल में जो प्रिंसिपल थे, वो सॉरी पीटीआई थे, उन्होंने मुझे पहली बार देखा और मेरे को टीम में लिया
0: जी।
2: उसके बाद ये सफर चलता रहा जो आज तक चल रहा है।
0: बिल्कुल। अच्छा, हैंडबॉल आने से पहले आपको कहीं से प्रेरणा मिली श्याम सिंह राजावत जी?
1: सर, स्टार्टिंग जब सवाई माधोपुर में हम खेलना शुरू किया था तब चंद्रवीर सर की कोच थे हैंडबॉल के।
0: अच्छा, तो आज गुरु चेला दोनों साथ।
1: उन्होंने स्टार्ट किया था, तब से हम आज तक हैंडबॉल खेल रहे हैं और खिला भी रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान लेवल पे बात करें तो आपके प्रियदीप सिंह जी है जो अभी काउंसिल में कोच लगे हुए हैंडबॉल के, उन्होंने भी काफी सहयोग मिला, उनसे सीखने को काफी कुछ मिला। और सबसे पहले उनकी आज ही काउंसिल में वो कोच लगे हुए, सबसे पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर ही थी।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने यहाँ 3-4 साल तकरीबन रहे, काफी कुछ बच्चों को सिखाया, ग्राउंड चलाया, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आपके गुरु कौन है आरंभिक, और इस खेल में कैसे आपकी रुचि बढ़ी है?
2: खेल में जब मैं कॉलेज में था, वहाँ कॉलेज में जब ग्रेजुएशन में था, तो वहाँ हमारे सर थे और दोस्त लोग थे जो उन्होंने कहा हैंडबॉल में बुलाया। बेसिकली मैं खेलता फुटबॉल था और उन्होंने मुझे बुलाया हैंडबॉल में। तो हैंडबॉल की स्पीड और हैंडबॉल का मतलब एक कह सकते हो बड़ा फास्ट गेम है
0: जी,
2: जो उसको देख के मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ और फिर मैंने कहा यार खेलते हैं, खेलने लगे। फिर उसमें बूस्टअप कर दिया कोच प्रियदीप सिंह जी ने, जिनकी पहली पोस्टिंग 2011-12 में राजस्थान काउंसिल में कोच की भर्ती, उसमें वो चयन हुआ उनका, उनकी पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर मिली उनको
0: जी।
2: वो उनको देख के, उनका चार्म और वो खुद इतना अच्छा लेवल के प्लेयर थे, तो उनको देख के हम भी सोचा कि ऐसा तो बनी जाए, ऐसा नहीं तो कुछ तो बनी सही इनके जैसा। तो वहाँ पे फिर हम इस गेम की तरफ मूव करने लग गए।
0: बिल्कुल, सफर तो चलता रहा। चंद्रवीर जी, आज हम देखते हैं कि आपका बचपन से लेकर अब तक का जो भी मैच था, उनमें सबसे यादगार कोई पल अगर आपका रहा हो तो वो थोड़ा सा हमें बताएं।
1: हाल ही में सर सीनियर चैंपियनशिप खेलने गए थे हुगली वेस्ट बंगाल
0: जी,
1: वहाँ सर क्वार्टर फाइनल एक मैच चल रहा था हमारा जो यूपी वर्सेज राजस्थान का चल रहा था। वो मैच में एक एक सेकंड सांसें रोकने वाला मैच था। एक यूपी के कोच थे तोहित सर, जब लास्ट 3 सेकंड बच रहे थे तब तोहित सर ने टाइम आउट लेके
0: जी
1: और एक गोल राजस्थान पे करवा के मैच बराबर कर दिया।
0: तो
1: मतलब एक बेहतरीन लेवल की कोचिंग देखने को मिली, बेहतरीन लेवल का मैच देखने को मिला, मतलब बैक टू बैक नेक टू नेक फाइट चल रही थी लास्ट तक
0: जी।
1: फिर 3 सेकंड खत्म होने के बाद मैच टाई हो गया, फिर 2-2 सेकंड का वापस टाइम दिया एक्स्ट्रा टाइम
0: जी,
1: उसमें 2 गोल की लीड करके राजस्थान जीती। तो सर मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच वो था।
0: अच्छा अनुभव आप लेके बैठे
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: अच्छा चंद्रवीर जी, आप बताएंगे कि अब जो एक सफल हैंडबॉल के खिलाड़ी बनने के लिए मतलब बालकों में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए?
2: बिल्कुल साहब, सफल खिलाड़ी बनने के लिए आपको पंक्चुअल,
0: समय का।
2: बिल्कुल, आप पंक्चुअल रहे ग्राउंड पे और डेडिकेशन आपका होना चाहिए और खेल के प्रति प्यार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है।
2: जब तक आप उस चीज से प्यार नहीं करोगे आप उस वो आपको चीज नहीं मिलेगी,
0: हासिल ही नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल, और कोच आपके भले के लिए ही बोलता है, आप उसको अदरवाइज लेते हैं। जिसने कोच की बात को आंख बंद करके फॉलो किया वो बच्चा रुक ही नहीं सकता। ऐसे 50 उदाहरण हैं जो माधोपुर के भी 10-20 उदाहरण हैं और बाहर के भी हैं जो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैंडबॉल खेल रहे हैं।
0: अच्छा,
2: बहुत अच्छे लेवल पे, सिर्फ इसलिए कोच की बात को उन्होंने फॉलो किया। कोच हमेशा बच्चे को सही सलाह और सही गाइडेंस ही देता है।
0: बिल्कुल सही है, देखो मार्गदर्शन बहुत जरूरी भी होता है। करते हैं श्याम सिंह राजावत जी, आप बताएं कि मैच के पहले आप अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं?
1: सर, मैच से पहले हम मेंटली फिट होना जरूरी है। प्रेशर में मैच खेलेंगे तो खेल ही नहीं पाएगा खिलाड़ी, तो पहले मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली। उसके बाद
0: जी
1: ठीक है, मैच के पहले हम थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं और वार्म अपिंग करते हैं, तो उससे ठीक है। टीम के साथ, एक साथ टीम भावना के साथ खेलते हैं
0: जी,
1: तब जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे मैच में।
0: राजाव जी, आप राष्ट्रीय स्तर के और मेडलिस्ट खिलाड़ी है, तो आप मेरे को ये बताएं कि जो आपको जो प्रेरणा दी है वो किस किस टीम के माध्यम से मिली है?
1: प्रेरणा सर हमको हमारे HI के फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी है तेजरा सिंह जी,
0: जी
1: उन्होंने राजस्थान लेवल पे हैंडबॉल गेम को बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष किया है सर, और अभी भी कर ही रहे हैं। और उन्हीं के साथ हमारे जो राजस्थान सेक्रेटरी हैं यश प्रताप सिंह जी, वो भी काफी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के कई बच्चों का भला किया और आज भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग हर जगह, और हर साल इसी वजह से मेडल लेके आ रहे हैं बच्चे।
0: अच्छा, हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को समझाएं।
1: हैंडबॉल में सर टीम तो 16 खिलाड़ियों की होती है
0: जी,
1: बाकी मैच में 7 खिलाड़ी खेलते हैं
0: जी।
1: राइट पोजीशन की बात करें तो एक गोलकीपर है, लेफ्ट बैक, राइट बैक और लेफ्ट विंग, राइट विंग और पिवट प्लेयर, ऐसे करके 7 पोजीशन होती है। और बहुत फास्ट मैच चलता है सर, हर पोजीशन का अलग अलग अपनी भूमिका रहती है।
0: राम सिंह जी, बात करें अपन, जो आपके खेल जीवन में कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है, थोड़ा सा वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: खिलाड़ियों का सर संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो सभी के होता है, हर गेम वालों को
0: जी।
1: बाकी हमारे हैंडबॉल में ज्यादा इसलिए क्योंकि लोग पॉपुलरिटी कम है, ठीक है, क्रिकेट जैसा पॉपुलर गेम है नहीं
0: जी।
1: तो गवर्नमेंट से जो भी सहायता सपोर्ट या और भी सोशल तो वो मिल नहीं पाती है सर, एक्चुअली फाइनेंशियली काफी संघर्ष करना पड़ता है हर एक स्पोर्ट्समैन को
0: जी।
1: जैसे कई क्रिकेट वाले हैं उनमें पैसा है सर, वहां तो ठीक है सब जगह सपोर्ट करती है, बाकी निचले स्तर पे खिलाड़ी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं है, तो कहीं टूर्नामेंट आयोजित करवाना, टूर्नामेंट में जाना आना, तो कई चीजें जो दिक्कत करती है, आज भी वो चीजें बच्चों के साथ देखने को मिलती है
0: जी। जी चंद्रवीर जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो एक सफल खिलाड़ी होता है एक शारीरिक ताकत के साथ और मानसिक संतुलन के साथ, तो इनका खिलाड़ियों का खान पान कैसा होना चाहिए अभी से, अगर बचपन से बच्चों को हम ये चाहें कि ये खेल में जाए, हैंडबॉल में जाए, ये किसी भी खेल में जा सके, तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए?
2: सर ये हैंडबॉल गेम क्या बड़ा रफ एंड टफ गेम है और ये टोटल 100% बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है
0: जी।
2: इसमें आपस में आपको रश करना ही पड़ेगा अपोनेंट के साथ
0: जी।
2: तो खाने पीने का इसके अंदर सबसे ज्यादा अहम रोल है। आपको देसी खाना
0: जी,
2: दूध दही छाछ घी, क्यों हैंडबॉल में हनुमानगढ़ गंगानगर या ग्रामीण परिवेश के बच्चे सबसे हैंडबॉल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं
0: जी,
2: जैसे करौली महावीर जी,
0: जी
2: के बच्चे,
0: क्या बात है,
2: वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको खान पान उनको अच्छा मिल रहा है गाँव के अंदर और शुद्ध और देसी मिल रहा है, दूध भी खा रहे हैं, छाछ भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, बढ़िया घर पे खा रहे हैं, बाहर का कोई मिलावटी नहीं खा रहे, इसलिए उनका बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर और ये और पावर स्ट्रेंथ
0: जी।
2: फिर वो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे तो उनका स्ट्रेंथ डेवलप होता है। खाने पीने के बाद अगर आप ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन ये अपने आप डेवलप हो जाता है।
0: बिल्कुल। अच्छा श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो टीम भावना का हैंडबॉल में कितना महत्व होता है?
1: टीम भावना, कोऑर्डिनेशन जरूरी है सर। बिना कोऑर्डिनेशन के हैंडबॉल मैच क्या है? टीम मैच है। जब तक हर प्लेयर संघर्ष नहीं करेगा तो टीम जीत नहीं पाएगी।
0: चंद्रवीर जी, सवाई माधोपुर जिले में देखें तो अभी जो सवाई माधोपुर की जो प्रतिभाएं हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं कि तरासा है सवाई माधोपुर जिले ने।
2: राजस्थान हैंडबॉल की तरफ से, जिला हैंडबॉल संघ की तरफ से जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने भाग लिया, जिसमें छवि श्री चौहान है जो भी गुड़गांव में डॉक्टर है, और तेजस्वनी चुंडावत है जो खुद अभी केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत है यहाँ सवाई माधोपुर, अरुण यादव है जो अभी जयपुर में है आरएस की तैयारी कर रहे हैं, हितेंद्र सिंह है ये खुद आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ये जूनियर मेडलिस्ट है ये
0: जी।
2: तेजस्वनी चुंडावत भी सिल्वर नहीं प्लेइंग है, और हितेंद्र सिंह जूनियर मेडलिस्ट है, एरंता है, ज्योति मीना है, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं दो बच्चे रावल की
0: जी।
2: सीमा मीना है जो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है
0: जी,
2: और भव्या राजावत ये भी स्कूल नेशनल है, आकांक्षा सैनी ये बच्ची भी स्कूल नेशनल वो ओपन नेशनल है, अजय सैनी ये बच्चा अभी रिसेंटली वेस्ट जोन में इसकी टीम ने सिल्वर मेडल, फिर इसका इनका ऑल इंडिया के लिए चयन हुआ, तो ऑल इंडिया में भी इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो 2025-26-27 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया
0: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, और आप लगातार काम कर रहे हैं तो बच्चों की प्रतिभाएं निखरना एक आम और स्वाभाविक बात है। चंद्रवीर सिंह जी, युवा खिलाड़ियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: सर, युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट
0: जी,
2: ये और आपकी सुबह उठना है तो उठना है, ग्राउंड जाना है तो जाना है
0: जी।
2: ये चीज जब तक ये भावना खिलाड़ी में नहीं आई, पंक्चुअलिटी मेन चीज, पंक्चुअलिटी आप सही टाइम पे सही काम करें
0: जी।
2: टाइम से ग्राउंड जाओ, टाइम से ग्राउंड आओ, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से पढ़ो भी सही
0: जी। बिल्कुल, पढ़ाई भी जरूरी है खेल के साथ साथ। अच्छा, बात करें श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो भविष्य में आपके खेल संबंधी क्या लक्ष्य हैं?
1: सर, खेल संबंधी भविष्य में यही लक्ष्य है कि हमारे जिले के जो बच्चे हैं वो हैंडबॉल गेम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दें और जिले का और देश का नाम रोशन करें। यही लक्ष्य आगे हम बना के चल रहे हैं, और अभी भी निरंतर बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं निरंतर वो कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है उनको।
0: बिल्कुल। चंद्रवीर जी, नए जो बच्चे खेलने के उत्सुक होते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से?
2: नए बच्चों को संदेश यही है कि आप मोबाइल छोड़ें, टीवी छोड़ें और घर का बिस्तर छोड़ें, टाइम से उठें, ग्राउंड आएं, मेहनत करें, जरूरी नहीं है किसी का साथ हो, टाइम पास नहीं करें, सीरियसली मेहनत करना है तो ग्राउंड आएं, बाकी टाइम पास करने के लिए तो आपका मोबाइल भी है और टीवी भी रखा है घर में।
0: बिल्कुल, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी दी। कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS Science Academy नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: जून 2026 के 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, प्रश्न और उत्तर, प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि के लिए उपयोगी। ये प्रश्न प्रमुख राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, अर्थव्यवस्था, रक्षा और अन्य घटनाओं पर आधारित हैं। एक, स्लोवाकिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया? उत्तर, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। दो, जून 2026 में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर, 65। दो पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री। 3, सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया? उत्तर, चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार, राइट टू वॉक ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ। 4, भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट कहां बन रहा है? उत्तर, महाराष्ट्र के पालघर जिले के तट से दूर। 5, नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग कहां और किस थीम पर हुई? उत्तर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय पति भवन। थीम, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? उत्तर, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। 7, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कहां हुई? उत्तर, इंग्लैंड। 8, FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 किसने जीता? उत्तर, भारत, रनर अप न्यूजीलैंड। 9, यूएस ईरान के बीच 14-point MOU इस्लामाबाद मेमोरेंडम का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण प्रतिबंध हटाना और क्षेत्रीय शांति। 10, G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसने की? उत्तर, फ्रांस। 11, RBI ने जून 2026 में रेपो रेट कितना रखा? उत्तर, 5.25%। FY27 GDP अनुमान 6.6%, मुद्रा स्फीति 5.1%। 12, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा? उत्तर, IIT दिल्ली, विश्व में 118वां। 13, पीएम मोदी को सेशेल्स का कौन सा सम्मान मिला? उत्तर, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, पर्यावरण संरक्षण के लिए। 14, भारत ने वेनेजुएला भूकंप राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? उत्तर, ऑपरेशन अमिस्टार। 15, ICGS अक्षय क्या है? उत्तर, नई पीढ़ी का फास्ट पेट्रोल वेसल, गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित। 16, जून 2026 में भारत ने कितने नए नौसेना प्लेटफॉर्म कमीशन किए? उत्तर, 3, INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्राय। 17, पहला स्वदेशी एयर कशिन व्हीकल H-561 किसने इंडक्ट किया? उत्तर, भारतीय तटरक्षक बल। 18, ओडिशा सरकार ने गो ईस्ट पॉलिसी क्यों शुरू की? उत्तर, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से निवेश आकर्षित करने के लिए। 19, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF की 19वीं संस्करण कहां हुई? उत्तर, मुंबई, NFDC द्वारा। 20, सुदर्शन पटनायक ने कौन सा पुरस्कार जीता? उत्तर, रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 सैंड आर्ट। 21, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत की रैंकिंग? उत्तर, 13वां। 22, तुषार मेहता का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? उत्तर, सॉलिसिटर जनरल के रूप में अगले 3 वर्ष। 23, राइट टू बी के रूप में अगले 3 वर्ष या अगले 3 वर्ष? 23, राइट टू बी फॉरगॉटन कहां मान्यता मिली? उत्तर, दिल्ली हाईकोर्ट आर्टिकल 21 के तहत। 24, पीएम मोदी ने जून 2026 में सबसे लंबे समय तक चुने गए पीएम का रिकॉर्ड बनाया? उत्तर, हां, 10 जून 2026 को 4,399 दिनों के साथ। 25, RBI ने केंद्र को कितना रिकॉर्ड ट्रांसफर किया? उत्तर, 2.87 लाख करोड़ रुपए। 26, FCRA पोर्टल और EOCI 2.0 किसने लॉन्च किया? उत्तर, गृह मंत्री अमित शाह। 27, ECLG S5.0 को किसके लिए बढ़ाया गया? उत्तर, वेस्ट एशिया संकट से प्रभावित MSMI जॉन्स के लिए। 28, नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जारी किया? उत्तर, हां, राज्यों की आर्थिक स्थिति के लिए। 29, ब्रिक्स NSA की 16वीं मीटिंग कहां हुई? उत्तर, न्यू दिल्ली। 30, गुजरात में डॉल्फिन की संख्या कितनी पहुंची? उत्तर 680+। 31, इंडिया एआई मिशन के सीईओ कौन बने? उत्तर सौरभ विजय। 32, सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन बने? उत्तर लोखंडे प्रशांत सीताराम। 33, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन? उत्तर डॉक्टर एसाईबल चट्टोपाध्याय। 34, वर्ल्ड बैंक के इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? उत्तर नीलकंत मिश्रा। 35, व्हाट्सएप के सीईओ कौन बने? उत्तर कुणाल शाह। 36, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की किताब का नाम? उत्तर दी सेकंड ऑर्बिट आईएसएस मिशन पर। 37, भारतीय राजा का निधन कब हुआ? उत्तर जून 2026, प्रसिद्ध तमिल फिल्मकार। 38, जसपाल राणा कौन थे? उत्तर प्रसिद्ध निशानेबाज और मनु भाकर के कोच। 39, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 किसने जारी किया? उत्तर रेलेवेंट अथॉरिटीज, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट भी। 40, नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट 2026 कब मनाया गया? उत्तर जून में 15 दिनों का।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
4: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: जी ट्यून इन कर रखा है आपने रेडियो डीएस 89.6। और इस वक्त अगर आप गंगापुर सिटी में हो और मुझे सुन रहे हो गाड़ी चलाते वक्त, और अगर गाड़ी स्लोली चला रहे हो तो शुक्र मनाओ कि आप गंगापुर सिटी राजस्थान इंडिया में हो, क्योंकि इस वक्त अगर आप कनाडा में होते तो आपका चलान कट सकता था। बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा, कनाडा का ये रूल है कि वहां अगर आप बहुत धीमे गाड़ी चलाते हो, स्लो गाड़ी चलाते हो, तो आपका टिकट यानी कि चलान कट सकता है। लेकिन फिलहाल गानों का चलान नहीं कटने वाले, क्योंकि अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए सिर्फ रेडियो डीएस 89.6 पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: कई बार मैं सोचता हूँ कि काश मैं घोंगा होता तो फिर ट्यून इन कर रखा 89.6 रेडियो डीएस, और मैंने घोंगा नहीं घोंगा का, घोंगा इज अ हिंदी वर्ड फॉर स्नेल्स, और स्नेल क्यों बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इनके पास एक ताकत है जो हम सब चाहेंगे कि काश ये ताकत हमारे पास भी होती। अब आप बोलोगे अरे भाई साहब स्नेल इतना छोटा सा स्नेल, इसके पास कौन सी ताकत? भैया सोने की ताकत। ये 3 साल तक बिना उठे, बिना आंखें खोले, बिना पलके झपकाए भैया सो सकते हैं। काश ये ताकत मेरे पास भी होता, आपके पास भी होता, पर फिलहाल मेरे पास एक ताकत है आपके लिए। अमेजिंग बैक टू बैक गाने प्ले करने वाला हूँ मैं रेडियो डीएस 89.6 पे,
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी की धरतर
1: बस बस बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस, और क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी बातें सुनना, जब भी मैं आता हूँ यार ये गाने रुक जाते हैं, पर गाने आपके लिए प्ले करो उससे पहले आज का शो यही तक था। जाने से पहले यही कहूंगा कि नफरत भी नहीं है तुमसे, गुस्सा भी नहीं हूँ। ओहो, नफरत भी नहीं हूँ तुमसे, गुस्सा भी नहीं हूँ, और तुम्हारा जिंदगी का भी हिस्सा भी नहीं हूँ। हाय हाय हाय, इतना क्रिंज पॉसिबल नहीं है, पर अमेजिंग गाने सुनना पॉसिबल है। हाँ जी, तो कल फिर मिलूंगा सेम जगह सेम टाइम। फिलहाल सुनते रहो 89.6 रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। सफरनामे में आज हम बात करने जा रहे हैं मन्ना डे साहब की। हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी महान गायकों की बात आती है तो उनमें मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी के साथ साथ मन्ना डे का नाम जरूर लिया जाता है। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 में कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार गाने गाए हैं। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: बात कर रहे थे मन्ना डे के बारे में। आपको बता दूं कि मन्ना डे की प्रतिभा का लोहा मोहम्मद रफी जैसे बड़े सिंगर भी मानते थे। रफी जी खुलेआम उनकी तारीफ किया करते थे। एक बार रफी साहब ने मन्ना डे को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि लोग मेरे गाने सुनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मन्ना डे के गाने सुनता हूँ। क्या खूब बात कही उन्होंने। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। मन्ना डे को अपने करियर की शुरुआती दौर में अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसकी मुख्य वजह यही रही कि उनकी सदी हुई आवाज किसी अभिनेता पर फिट नहीं बैठती थी। यही कारण रहा कि एक जमाने में वो हास्य अभिनेता महमूद और चरित्र अभिनेता प्राण के लिए गीत गाने को मजबूर थे। प्राण के लिए उन्होंने फिल्म उपकार में कस्मे वादे, प्यार वफा और जंजीर में यारी है ईमान मेरा, यारी मेरी जिंदगी जैसे गीत गाए। उसी दौर में उन्होंने फिल्म पड़ोसन में हास्य अभिनेता महमूद के लिए चतुर नार गीत गाया। उन्हें महमूद की आवाज समझा जाने लगा था। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

आस्था कोन के जवान मारो न मारो न मारो न मारो न मारो हां न मारो न मारो जगत कर जवा में चोट कर जवा में चोट कर जवा में चोट कर दे देता सम मग कर दे देता।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। संगीत जगत से जुड़े लोगों को हैरानी होती है कि इतने मुश्किल गाने मन्ना डे इतनी आराम से कैसे गा लेते थे। मन्ना डे को मुश्किल गीत गाने में महारत हासिल थी। कहा जाता है कि जब कोई गाना मोहम्मद रफी जी या किशोर कुमार जी जैसे महान सिंगर नहीं गा पाते थे तो संगीतकार सीधा मन्ना डे के पास अपना गाना लेकर पहुंच जाया करते थे। बहुत ही उम्दा कलाकार थे। फिर लौटूंगी आपके पास आज के लिए सफरनामे में इतना ही। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: भाई सुबह के ठंड से कम और बॉस की बातों से ज्यादा परेशान रहता हूँ। चार दिन पुरानी बात है यार, मैं किसी पर्सनल रीजन से परेशान था तो बॉस कहता है आगे और केबिन में घुस गया बिना नॉक के कि यार मुझे बताओ ना, मुझसे बातें करो, मैं हल बताऊंगा, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन इज द की, जब तक बातें बताओगे नहीं सॉल्व कैसी होगी। अब आज सुबह की बात है, बॉस खुद ऑफिस लेट आया। मैंने पूछा आप आए क्यों नहीं, कहते मैं घर पर लॉक हो गया। तो मैंने कहा यार मुझे बताते, तो बॉस कहते क्या हो जाता उससे। मैंने कहा मुझसे कम्युनिकेट करते तो सोल्यूशन मिल जाता। बॉस कहते यार तुम चाबी कैसे ढूंढते। अरे बॉस कम्युनिकेशन इज द की, पर आप कहीं मत जाओ। बैक टू बैक आपके लिए मैं 5 गाने प्ले करने वालों ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: गंगापुर सिटी की धरती।
1: हाँ हाँ हाँ, थोड़े थोड़े लेफ्ट आगे पीछे। अरे अरे अरे अरे, अरे ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और इस वक्त अगर कार चलाते हुए आपने आगे वाले या बाजू वाले, दाएं वाले, पीछे वाले, किसी भी कार वाले इंसान को आपने गंदे गंदे हाथों से इशारे अगर किए हो, तो शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और जिम्बाब्वे में नहीं। क्योंकि जिम्बाब्वे में रूल्स है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए किसी भी आसपास वाले गाड़ी के ड्राइवर या सड़क पे भी खड़े इंसान को गंदे इशारे करोगे हाथों से, तो आपको जेल हो सकता है। शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और इस वक्त ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो डीएस 89.6, क्योंकि कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए।

0: गंगापुर सिटी की धरतर
1: ट्यून इन कर रखा है अपने 89.6 रेडियो डीएस और कहीं जू में नहीं हो आप, लेकिन लेकिन लेकिन आज का शो यही तक था। लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया फैक्ट मेरे हाथ लगा है, क्रो यानी कि जो कौवे होते हैं वो इंसानों के चेहरे याद रखते हैं। और एक और खास बात यह है कि अगर उनके मन में कोई ग्रज है यानी हमारे खिलाफ शिकायत है कुछ भी, तो वो सारी चीजें भी याद रखते हैं। यानी कल ऑफिस जाओगे और बॉस को पुराने ग्रजेस याद रहे तो वो आपका बॉस नहीं, वो है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो डी।